श्रीमन्नभीष्टभटाखिलोकबन्धो श्रीश्रीनिवासजगदेकदयैकसिन्धो श्रीदेवतागृहभुजान्तरदि